0: লৌটা সত্যি দুয়ার এ কই সব রে লৌটা লৌ সত্যি
1: ওই না পানি লে না এ পানি লে না পানি
2: পানি লে পানি লে পানি এতলে পানি
0: লৌ না লৌ সত্যি মুটিও কা কেতা
3: लापरवाही नगरौ प्रज्वलनशील पदार्थमा सबैले दिउँ ध्यान
1: एक काटी सलाईले लिन सक्छ ज्यान
2: सलाई तथा लाइटरहरू बाल बच्चाहरूले देख्ने तथा भेट्ने ठाउँमा नराखौं
1: धुम्रपान गरी जथाभावी सुरतको ठुटाहरू नफ्याकौं
3: घर वरिपरि झिक्रा पात पतिङ्गर नथुपारौं
4: होली बतासको मौसम अनि आगलागी हुने बढी सम्भावना बेलैमा सबैले होस पुर्याउ अकल्पनीय घटनाबाट आफू पनि जोगियौं र अरूलाई पनि जोगाऊ
5: जनहितको लागि हाम्रो रेडियोको प्रयास।

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन और विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।